करने पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं उनके शर्मा के झुकने पे, या लिखूं उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं।

0: newest.
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दी वे ही एफएम ईशान हमादो वागुतु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: हम एकनी लो दी है के मेगाहर्ट्ज दी रही है फिल्म।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: DJ.